पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है जिसकी बहुत सी कारें हैं, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं? नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

साजन संत मिल नाम जपेहा, शीतल शांत सहज सुख पाया। आठ शीतल शांत सहज सुख पाया, ठांड पाई।

न्याई शोभ नहीं बिन परतारे बिनो सुनियो जब ठाकर मेरे बेग आयो कृपा धारे कहो नानक मेरो बनियो सुहागो पत शोभा।

दयाल होए मेरा स्वामी, किस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की।

लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभु अपना धरता। दीस आवत में बहुत भियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा सतगुर भेटिए, पूरी होवे जुगत हस।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए,

ताहर ने फल सब घाल गवास मेरे मन हर ऊपर की जे भरवासा जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जनदासा जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ पर

मेरे मालिक मैं तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा, मन करके तन करके, अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया हुआ, मन ना जुड़िया हुए ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा तो मन जुड़िया है, तन की केड़ी लोड़, प्यार तो इस तरह कोई नहीं होता। जिन्होंने प्यार किया है महाराज उन्हां दी गल करदे, गुरसिखा की गल करते हैं, भगतों की गल करते हैं, संतों की गल करते हैं, जिन्होंने प्यार किया, प्यार किया तो फिर भरपूर किया। प्यार च अधूरेपण की की गल, जब भरपूर प्यार करना है तो फिर तनो मनो प्यार करना। तुसा वेखिए सुहागना पति नाल मिठा बोल दिया ने, ते पति की प्रसन्नता वास्ते तरह तरह के शिंगार भी कर दिया, पति की प्रसन्नता वास्ते चंगे पकवान भी पकाउंदियां, ते पति थोड़ी देर पछड़ जावे घर आउण तो पौड़ियां होईयां फिरदियां रहिंदियां ने, मन विच भी प्यार है। शरीर करके भी पति की प्रसन्नता लैण वास्ते प्रयत्नशील है। ते जे कोई कहे मैं तां अंदरों प्यार करदा, बाहरले प्यार की कहड़ी लोड़ है, घर बैठा रहे, गुरुद्वारे आउण की थां नहीं, गुंजाइश नहीं, समा नहीं, अधूरा प्यार लैके बैठा होगा अबल तो होना ही कोई। एक ऐसा भी हो सकता है जिहड़ा गुरुद्वारे आके बैठ गया, मन इत्थे नहीं पिया जुड़दा, मन कितने संतान ते रह गया है, मन कितने मकान ते रह गया।

भगत नु गुरु प्यार वाले नु बिना गुरु के दर्शन ते गुरु के दर्शन दे भी दो अर्थ ने ना एक ता दीदार जिहड़ी अखां नाल करने आपां एक दर्शन संस्कृत फलसफे नु कहिंदे जो गुरु की फलासफी है जे उहनूं नहीं समझिया ते दर्शन सदा अधूरे रह जाणगे। सतगुर नु सब को देखदा जेता जगत संसार डिठे मुक्त ना होवे चिचर गुर शब्द ना करे प्या गुर शब्द ना करे विचार जिन्ना चिर गुरु के शब्द दी विचार गुरु के बचना दा अध्ययन गुरु के बचना दी कमाई ना कीती उन्ना चिर केवल आए मत्था टेक के तुर गए ता प्यार बड़ा अधूरा है। इस तरह वेखिया गल नहीं बननी अखां नाल गुरु के सोहने दर्शन दिदारे ते मन नाल गुरु के दर्शन भाव गुरु के फलासफी दी विचार गुरमत दी विचार चले मन तन करके इत्थे महाराज कहिंदे ने नहीं रह सकदा गुरु का सिख गुरु के दोहां दर्शना बिना फलासफी बिना ते देखे बिना गुरु नूं कोई नहीं इहदा गुजारा हुंदा। दासां ने पावे बिन तरसावे एक खिण धीरज क्यों करे नाम बिहूणा तन मन हीना जल बिन मछली ज्यों मरे। बंदा तड़फदा फिरदा रह जांदा गुरु तो टुटिया ईश्वर तो टुटिया होया नाम तो टुटिया होया बंदा मन करके तन करके बेचैनी विच रहिंदा जिवें मच्छी पानी चो बाहर कढ के सुट दईए उहनूं कहीए तां केवल शरीर करके तड़फ रही है मन तां इहदा सुखी है कोई नहीं मन सुखी रहिंदा उह जिहड़ी शरीर करके तड़फ रही है अंदरों भी दुखी ते जिहड़ा बंदा अंदरों दुखी है उह शरीर करके भी तकरीबन दुखी हुंदा है। तुसां देखिया बंदे नूं गुस्सा आ जावे कहिंदा मेरा तां तन मन पिया सड़दा कहिंदा और उंज भी चेहरा भी लाल सूहा हो जाएगा हथ पैर कंबन लग पैणगे हुण गुस्सा तां मन नूं आया तेरे शरीर नूं की हो गया। और एक दिन ऐसा भी आवेगा डॉक्टर कहणगे गुस्सा ना करिया कर तेरा खाना तेनूं कोई नहीं भ्यासम हुंदा तेरा मैदा काम नहीं करदा क्यों मैदा तां शरीर है मैदा तां शरीर दा केंद्र है गुस्से दा दिमाग च गुस्से दा मैदे नाल की तलक है बहुत वड्डा तलक क्रोध करन वाला चिंता करन वाला अज नहीं ते कल नूं बहुत वड्डा बीमार हो जाएगा। शरीर ते मन दा बड़ा संबंध है प्यार मन ते तन दोहां तरीकियां दे नाल पुगदा है एक तरीके नाल कोई नहीं पुगदा। महाराज कहिंदे ने जिहड़े टुट गए ने प्यार तो उन्हां दा मन ते तन दोवें कमजोर बेचैन दुखी रहिंदे ने नाम बिहूना तन मन हीना जल बिन मछली ज्यों मरे ते कहिंदे ने मैनूं इहो जी मौत इहो जिहा तड़फ

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा। मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जांदी है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार दिंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई। चाल ठीक हो गई और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा है, भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहिंदे ने पग बननी है, लेकिन गुरु का सिख कहिंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि उन्हूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगदा। चाल तो पता लगदा है इहनूं तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलन दा भी पता लगदा, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलन तो भी पता लगदा है इसदे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो ही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाते।

किन्ही निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा किन्ही ग्रह।

पंडित सासत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तर भव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाय दे सवारी पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैश पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई।

के बादशाह पिठ हो रही है हुण इत्थों दी, मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना ब्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी, सिर ते चुकनी, ते फिर सत्कार दे नाल मन विच भावना लिया के आके गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी इशनान दी सेवा करनी। ते जदों साल बीत जा

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे रस्ते

गुरु पातशाह इतना हुण पिट हो रही है, माफी दे देना। ते फिर व्यासा वाल तुर पे, गागर जल्दी परी सिर ते चुकिया। आज एडा मी पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं। बाबा अमरदास जी आ सेवा दे पुंज, सिर ते गागर चुकी ते दुरदे हुए आ रहे हैं। रस्ते विच जुलायां दी

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समरथ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवा

जब लग बिकल पाई नहीं पानी पज लै रे मन सारन पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना पजया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन किए निरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ दाम। फिरत बहुते जुगहारे हो, फिरत फिरत

कई जन्म पैकेट पतंगा, कई जन्म गाजर मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सर्प होयो।

पंथ दोजो सवार, राम राम अंतर उधार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिसमन बसे ते साज परीखिया, मन तन नाम जपो ले लाए, दुख दर्द मन ते पो जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगे निभे खेप तुम्हारी, एकाटेक रखो मन माहे, नानक बोल न आवे जा।

और सब तू वड़ा काम ए कीता। चार वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद वैस चारा नू एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता। ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं, सानू सारे नू बनान वाला एक परमेश्वर है। आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। तन गुरु नानक साहब का अवतार होया, देवी देवतिया अपछरा खुशी दे गीत गाए। आओ फिर इस खुशी दे मौके आपा भी धन गुरु नानक साहब जी पवित्र मिठी याद विच ए शब्द गा के रसना पवित्र करी।